0: उन्हें नीचे से बुदुए
1: नियरांग किसी शेर बे पामे बुगो चौहा में ना बुगो किचे हर चोरे
0: बाबा पामे रांसुर शेर ने याक्षियों ना ये तो ना कब्जों ना ने लेलो ना शे तो तो पाय याव तो साचे तिन्दे तो शेवाय तो बे
1: कौनसा नियस तो निया दे ना मशी रंग कौन के पुरी दे रंगे कौन के गुंग में तो गुंग में ऐसा पिंजू कुछ थे भी हम
0: बाबा गनी द तंग आले थे भी सेस जेमा ने राजी दे ना
1: ना करी ये सो रे ना करी
0: Pyunama. Pochunga nama.
1: Tanda tenki me ba. Chonsbe pomochi sui kondu chikri.
0: Nga koyu. Baba ngay niga tunda takju tosu ma, ngara niga tunda shiigi. Yine ngara niga tunda di, samda ne shiñhir chigi.
1: Shiya khartu.
0: Baba muntun shiya yung sengbi.
1: Chawa chao ma shi.